0: मिक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: साउथ हॉल ट्रेवल
1: 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: Like a radio, easing you through the night with London's biggest hit.

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के

0: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
1: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic Premium and made it the way our eldest used it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
7: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course लंच सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
11: Be part of a historic grand opening।
12: Experience the newly inaugurated BAP P.S. Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
11: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
12: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
11: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
14: અંકલ, તમે પહેલાથી આવા જ છો.
15: આવા એટલે કેવા?
13: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
15: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે.
13: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
15: તો થઈ જાય Chindigi once more.
16: Hey, this is Radio Ali from the Radio Ali Rollercoaster. Catch my show every Monday to Friday evenings from 7 to 10 p.m. Make sure you make it a date, 7 o'clock on the Radio Ali Rollercoaster. Mucho piar.

0: celebrating 25 years of Gadar. Monday, 15th June, 6 p.m. onwards. Only on Zee Cinema. Available on Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
1: Gadbad gotala che. Problems mota che. Par badu alright che.
2: Mechane back to back thran movies joy li thi.
1: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie Badu Alright Che.
2: Better kalakmal pacho aavi jaise ne pachi badu alright thai jaise.
1: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
3: Evu lage che ke picture chalche.
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
5: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Start with BAPS's Swaminarayan Mandir Darshan in Paris, then explore Europe's most iconic destinations. Call today on 0208 900 2323.

0: at the Atif Aslam Concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5 gram gold coin, if you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स इन स्कॉटलैंड द लेक डिस्ट्रिक्ट डेवन एंड कॉर्नवॉल टू क्लासिक यूरोपियन जर्नीज अक्रॉस फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली एंड द नेदरलैंड्स स्टार टूर्स टेक्स केयर ऑफ एवरी डिटेल including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
5: Tonight is the night.
6: Atif Aslam performs live at the O2 today. Get ready for an unforgettable evening. Last tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
7: Hi, it's Ankit Tiwari.
8: Hi, it's Ankit Tiwari.
7: Keep listening to Leica Radio.
9: Leica Radio. A Leica Radio classic.

0: Bishar rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Bishar rice, come down and taste the difference.
1: 105 super hit shows pachi have London ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna rejo husband ji. Leena Shah and Samir Shah sathe hasyani full guarantee Fridays 26 June 27 Patidar Samaj Wembley Park ma ratna 8 vage. Tickets booking mate visit karo eventbrite.co.uk, call karo Videorama athwa call karo Mr. B 07860280655. Sakhna rejo husband ji.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे ज्यां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 02037773633 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
3: गड़बड़ घोटाला छे प्रॉब्लम्स मोटा छे पण बधु ऑलराइट छे
4: मैं छे ने बैक टू बैक थ्रन मूवीज जोई लीधी
3: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी क्योर्स विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे
4: बेहतर कलाकार पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे
3: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल
5: एवू लागे छे के पिक्चर चाल छे
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
8: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
8: This week's number one on the Leica Radio Chart Show. Tune in every Friday at 6 p.m. on Leica

इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. A Laika Radio Classic plays now.

0: Celebrating 25 years of Gadar. Monday, 15th June, 6 p.m. onwards. Only on Zee Cinema. Available on Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: 7677627।
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
2: Hi everyone, this is Aridha Khan from the Saturday

0: Starting off the show this evening with two amazing tracks there from the movie Rabta and Chichore. Only to remember Sushant Singh Rajput on his 6th death anniversary. What an incredible loss it has been to us all, hai na? Ek choti se, chote se acting career mein Sushant ki infectious smile aur charm ne audiences ka dil jeet liya tha. Chahe wo television ho, jahan wo पवित्र रिश्ता के मासूम से मानव थे या MS धोनी फिल्म का कैरेक्टर ऑन द बिग स्क्रीन सुशांत सिंह मेड अ ट्रूली अनफॉरगेटेबल मार्क विद विच एवर रोल ही परफॉर्म्ड आई थिंक और आज थ्रू आउट द शो हम सुशांत को याद करते रहेंगे एंड एज मोस्ट ऑफ अस मे ऑलरेडी नो दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर सुशांत वाज नोन फॉर लुकिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और उन्होंने एक लिस्ट ऑफ 50 यानी 50 ड्रीम्स बनाई थी दैट ही वांटेड टू पैशनेटली अकम्प्लिश एंड दिस यू नो लिस्ट इट एनकंपसेस एरियाज ऑफ साइंस एस्ट्रोनॉमी टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एज वेल तो सुशांत की इन्हीं कुछ ख्वाहिशों की बात करूंगी आगे शो में सो जरूर बने रहिए मेरे साथ ऑल द वे अप टू 10 PM और साथ साथ ऑफ कोर्स होंगे लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल हार्ट वार्मिंग नंबर्स और हमारे दो fun games as well. You're tuning into the Sunday Wrap with me, Messa, on Laika Radio, brought to you by the very affordable travel website, tickets2india.co.uk.
1: WhatsApp Laika Radio Greater London now on 07424 22 22 22. All about London's biggest Asian hits non-stop.
2: Laika Radio.

0: Mocha Radio.
1: What a beautiful track there from Devdas, Hannah. Well, it's time now to kick off with our weekly fun game called Join the Dots, जिसमें मैं आपको तीन क्लूज देती हूँ अबाउट अ बॉलीवुड फिल्म और आपको बिल्कुल कम से कम क्लूज में इस मूवी को गेस करना होता है. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस टुडेज बॉलीवुड फिल्म इन यू नो जितना जल्दी हो सके आपको ये गेस करना होता है. सो माई फर्स्ट क्लू इज कमिंग योर वे. आज की मूवी 2018 में रिलीज हुई थी, 2018 में, एंड इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म. फिल्म का म्यूजिक काफ़ी अच्छा था, पॉपुलर भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी वो थोड़ी वीक रही. लीड एक्टर्स की बात करूँ तो फिल्म में जो हीरो हैं वो हैं हमारे बॉलीवुड के बादशाह, और जो मेन हीरोइन है वो एक्ट्रेस वो हैं जिन्होंने इन बादशाह के साथ ही अपना जो बॉलीवुड डेब्यू है वो किया था इन द ईयर 2008. And she's also married to a cricketer in real life. So that is your first clue. 2018 mein release hui ek romantic comedy drama film which had some great music but didn't do very well at the box office. Lead actor hai hamare Bollywood ke badshah aur film mein jo heroine hai unhone inhi badshah ke saath 2008 mein apna Bollywood debut kiya tha. And she's also married to a cricketer in real life. Tell me which movie this is on this number.
0: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424 22 22 22. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: A look at your currency rates now. One British pound can get you up to 127.4 Indian rupees, 372.8 Pakistani rupees, 449.5 Sri Lankan rupees, 164.7 Bangladeshi taka, 86.1 Afghan afghani and 1.34 US dollars.
3: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio. Join the dots with Mesa.
3: Leica Radio.
2: Join the dots game चल रहा है. जी हाँ, एक ऐसी game जिसमें मैं आपको एक Bollywood movie के तीन clues देती हूँ और आपको इन clues को join करके film का नाम guess करना होता है. लेकिन I don't give out the clues एक साथ. I have already given the first clue now and a while ago, and then in the next hour I'm going to give out another clue and let's see, just to make things easier for those who couldn't guess it in the first just one clue. But we have some winners here जिन्होंने एक ही क्लू में फिल्म को बिल्कुल करेक्टली गेस कर लिया है. वेल डन टू सपना, मेघना, निलेश, कॉमिल फ्रॉम विंसर, माला टेलर जी एंड साधना. आप सभी के जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है. मेरा पहला क्लू मैंने आपको दिया है कि आज की मूवी 2018 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. फिल्म का म्यूजिक अच्छा था बट बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बुरे. लीड एक्टर्स की बात करूं तो फिल्म में हीरो हैं हमारे बॉलीवुड के बादशाह, और जो मेन हीरोइन बनी है उन्होंने एक्चुअली में अपना जो बॉलीवुड डेब्यू किया था 2008 में इन्हीं बादशाह के साथ किया था. And she's also married to a cricketer in real life, I said. Tell me which movie this is on this WhatsApp number.
0: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424-222222.
4: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Europe to faraway places, the same delicious Indian food. Wherever you go, that's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

स्टार्टिंग ऑफ द लास्ट एंड फाइनल आवर विथ टू अमेजिंग ट्रैक्स देयर. मैं वापस आऊंगा से मस्कारा एंड घाघरा फ्रॉम ये जवानी है दीवानी. एंड दिस इज योर संडे रैप ओनली ऑन लाइका.

0: इन सब तरीकों से आप हमें सुनते हैं. दिस शो इज ब्रॉट टू यू बाय tickets2india.co.uk, अ ट्रैवल वेबसाइट जिस पे यू नो लॉग ऑन करके आपको मिलेंगे सम ग्रेट ऑफर्स on flights to India and other worldwide destinations as well. So do check it out. Thank you so much to everybody who is tuning into the show this evening, and your lovely, lovely messages always makes it worth for me to come in here. It's always a pleasure being here in the studio, you know, talking to you guys, playing some of my favorite songs for you. और जब मुझे पता चलता है कि मेरी पसंद आपकी पसंद से मैच करती है, then it's just an amazing feeling which I cannot describe. Thank you so much. And of course, हमारे fun games, join the dots and catch me if you can, जिसमें you know हम खेलते हैं, मजा करते हैं, है ना? Thank you so much for all that participation. It really means a lot. Showcase hour में भी अभी बहुत सारा beautiful music बाकी है, including the Laika chart topper of this week, your Pakistani hit of the hour, your indie pop hit, which is a beautiful ghazal in the vocals of Jagjeet Singh Sahab. That's coming up. And of course, is what? What's coming up? Well, let me tell you.
1: Catch me if you can with Mesa.
2: Laika Radio.
0: Yes, इस वक्त मैं आपके साथ शुरू करने वाली हूँ एक और fun game which is called Catch Me If You Can. This is another game that I play with you on my show. और इसमें जैसे मैंने join the dots game में आपकी Bollywood film की you know just general knowledge test की, इस game में मैं आप कि गाने यू नो जितने भी हम गाने सुनते हैं, याद करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, उनमें से यू नो कितने गाने हम एक्चुअली करेक्टली गाते हैं. आई टेस्ट योर बॉलीवुड लिरिकल नॉलेज इन दिस गेम. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट टुडेज कैच मी इफ यू कैन राइट. आई एम गोना रीड आउट थ्री सॉन्ग लाइंस और उनमें से किसी एक गाने की लाइन में मैं करूँगी वर्ड्स की हेरा फेरी और आपको पहचानना है कि गड़बड़ किस में हुई है. ऑलराइट, पहला गाना है नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई फ्रॉम बेफिक्रे. दूसरा गाना है अगर तुम साथ हो फ्रॉम तमाशा. और तीसरा गाना है ये इश्क हाए बैठे बिठाए जादू चलाए हाँ ओ रामा फ्रॉम जब वी मेट. बताइए किस गाने में हुई है गड़बड़. आई एम गोना रिपीट इट फॉर यू. पहला गाना है नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई फ्रॉम बेफिक्रे. दूसरा गाना अगर तुम साथ हो फ्रॉम तमाशा. और तीसरा गाना है ये इश्क हाए बैठे बिठाए जादू चलाए हाँ From जब वी मेट. बताइए अपना जवाब इस नंबर पे.
1: WhatsApp Laika Radio Greater London now on 07424-222222.
3: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. चाहे यूरोप हो या दुनिया का दूसरा कोना, हर ट्रिप फील होता है द Star Tours Experience. Visit startours.co.uk.

0: two businesses.
1: Same town.
0: Same service.
1: One appears on page one of Google.
0: The other doesn't.
1: Guess which one gets the customer?
0: The truth is brutal.
1: The first page of Google gets the business.
0: Everyone else gets what's left.
1: So here's the real question.
0: When your customers search for what you sell, do they find you?
1: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
0: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
5: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
6: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं.
5: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
7: Maa, dulhan ke liye makeup.
5: Shut up! For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
9: गारंटेड.
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
9: फोन 02085748410.
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
14: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on travelhubworld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
3: This is huge.
2: Thadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
3: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
2: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
3: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
2: Thadi Kalal, Rayner's Lane. There is only
4: 105 सुपर हिट शोज पछी हवे लंडन मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी जयज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखणा रेजो हसबंड जी लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनी फुल गारंटी फ्राइडेज 26 जून 27 पाटीदार समाज वेम्बली पार्क मा रातना 8 वागे टिकट्स बुकिंग माटे विजिट करो eventbrite.co.uk कॉल करो वीडियो रामा अथवा कॉल करो मिस्टर बी 07860280655 सखणा रेजो
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
3: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
5: Exclusive radio partner, Like Radio.
6: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
7: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
6: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
7: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
6: दर्शन पण अने यूरोप पण
7: सीट्स जल्दी भराई रही छे. आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
6: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स.
7: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
8: फादर सन नो बॉन्ड जितलो स्पेशल छे इटली ज स्पेशल फिल्म आवी रही छे.
9: अंकल तमे पहला थी आवाज छो.
10: आवाज એટલે કેવા.
8: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
10: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તું બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું. અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવી ન પૂછે.
8: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધ ઇમોશન્સ લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાસ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
10: તો થઈ જાય જિંદગી વન્સ મોર.

0: ये है लाइका रेडियो, द वॉइस दैट टचेस एवरी सोल। स्टार एक्सप्रेस प्रेजेंट्स हरिहरन्स सोल इंडिया
1: लाइव इन लंदन। Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
0: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.